श्री रामलला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारु भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत।

0: और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

श्री गोविंद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण प्राकृत गुणों पर आधारित तीन प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हैं।

श्री भगवान आहार तप यज्ञ एवं दान आदि का सतो रजो एवं तमोगुण के आधार पर विश्लेषण करते हैं। वे कहते हैं

श्री गोविंद, ओम, तत्, सत नामक तीन ब्रह्म सूचक शब्दों के महत्व को बतलाते हुए समस्त यज्ञ, तप, दान आदि में इन शब्दों के उच्चारण की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं।

हमारे यहां नदियां हमेशा से पवित्र रूप में देखी जाती रही हैं। वेदों की ऋचाएं तो यहां तक कहती हैं कि जो व्यक्ति गिरी आश्रय या नदी संगम पर ध्यान मनन करता है उसे ही पवित्र बुद्धि प्राप्त होती है। इसी गहरे विश्वास के चलते आर्यों की प्राचीन सभ्यता 7 नदियों के आसपास विकसित हुई और उस प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। धीरे धीरे ये आर्यजन अपनी सभ्यता का विस्तार करते हुए महाकौशल और मालवा के पठारों की गहरी घाटियों में भी उतरते चले गए, जहां उन्होंने

मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा कनखल तक, सरस्वती कुरुक्षेत्र तक, किंतु नर्मदा तो अमरकंटक के सघन जंगलों से होकर खंभात की खाड़ी तक एक सी पवित्र है। इतनी पवित्र कि वो अपने दर्शन मात्र से धन्य

0: इसकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा भी अत्यंत अर्थगर्भी और प्रासंगिक है। इन्हीं जनश्रुतियों के आधार को मजबूत करते हुए डिंडौरी गांव के श्री अरविंद नारायण पाराशर।
1: जनश्रुतियों के आधार पर अमरकंटक जो नाम अभी हम लोग सुना करते हैं, ये अपभ्रंश होना चाहिए, क्योंकि अमरकंटक का मूल नाम अमरकंठ है और यह शंकर जी के उस नीलकंठ को स्मरण कराता है जिसके जरिए जहर पी करके भी वे अमर हैं। इसीलिए यह भी जाहिर होता है कि अमरकंटक, तथाकथित अमरकंटक शंकर जी की तपस्थली है। और एक बार जब वे अपने तप में इतने अधिक लीन हो गए कि प्रेमाश्रु बहने लगे, तो एक एक अलग अलग प्रेमाश्रु एक एक जलधारा के रूप में

0: बह निकला, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बही जलधारा नर्मदा और पूर्व की ओर बही हुई जलधारा सोन के नाम से प्रसिद्ध।
1: जबलपुर के समीप धुआंधार और भेड़ाघाट के जलप्रपात के दृश्य नर्मदा के यौवन के ही तो प्रमाण है। विश्व प्रसिद्ध धुआंधार यदि नर्मदा का विस्फोटक उल्लास है तो भेड़ाघाट उसके आत्मसंयम की निशानी। नर्मदा को जीवनदायिनी प्रतिपादित करते हुए जबलपुर के अमृत लाल जी बेगर।
2: बरमान घाट का मेला नर्मदा तट पर भरने वाले मेलों में सबसे बड़ा है। होशंगाबाद के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से हैं। यहाँ अंधकार में नर्मदा में दीप छोड़ती स्त्रियों का दृश्य हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाता है। हमारे देश की इस प्राचीनतम नदी पर कई नवीनतम बांध बन रहे हैं। ये बांध होंगे पानी के रिजर्व बैंक। जब चाहो जितना चाहो पानी ले लो, नर्मदा का भंडार सदा भरा रहेगा। नर्मदा सच्ची अर्थों में माता बनेगी। नर्मदा कभी हमारे देश को दो हिस्सों में बांटती थी, आर्यावर्त और द्रविड़ देश के बीच की विभाजन रेखा थी। बाद में यही नर्मदा उत्तरापथ और दक्षिणापथ की संस्कृतियों की मिलन रेखा बनी और अब यही होगी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा। नर्मदा तो बस नर्मदा है। जैसा भव्य उसका अतीत है वैसा ही उज्ज्वल उसका भविष्य है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।

नर्मदा की पूर्वी और पश्चिमी घाटी में गौंड, बैगा, कोरकू और भील जैसी अनेक जनजातियां आज भी नर्मदा के सघन विरल वनों और उबड़ खाबड़ घाटियों को अपनी बांसुरी और मांडल से गुंजाती रहती हैं।

नर्मदा के पश्चिम घाट के आदिवासी मुख्यतः भील और भीलाला है, जो झाबुआ, अलीराजपुर और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में सूखी जटाओं की तरह नीरस और नंगी पहाड़ियों के बीच कंकरीली पथरीली जमीन में शताब्दियों से जीवन यापन कर रहे हैं।

पूर्वी छोर पर बसे बैगाओं का जीवन अपने आप में मोहक है। प्रशस्त ललाट, बढ़े हुए केश, चेठी पर लटकता हुआ चूड़ा, कमर से लिपटा हुआ कोपिन, कंधों पर रखा हुआ धनुष और कुल्हाड़ी, बांस के टप्परों पर मिट्टी के पलस्तर वाले घर और जंगलों की निर्द्वंद चुप्पी में जब ये अपनी टिंकी और मांडल उठाकर हरेली, दशहरा, नवाखाना या विदुरी का उत्सव मनाते हैं तो उल्लास से थिरक उठते हैं।

0: बैगा जाति का विस्तृत वर्णन करते हुए डॉक्टर नित्य उपाधीक्षित।
1: मंडला जिले की समस्त जातियों के बीच सबसे प्राचीनतम जाति बैगा है और इस

जाति का निवास स्थान मेकल शैलमालाएं है, जो कि नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है। मेकल शैल मालाओं में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घने जंगलों में रहने के कारण ये वहाँ की वनस्पतियों से, जड़ी बूटियों से सुपरिचित हो जाते हैं और असाध्य रोगों में उनका प्रयोग करते हैं। जब कभी ये नीचे आते हैं तो लोग ऐसा कहा करते थे कि बैद गा आ गया। मंडला के पूरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर गा लगाने की परंपरा है, तो जब भी बैगा नीचे जाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि बैद गा आ गया, अर्थात दवा देने वाला आ गया। बाद में कालांतर में प्रयत्न लाघव के नियम के अनुसार मानव की प्रति संक्षिप्त में बोलने की है तो दा वर्ण का लोप हो गया और बैदगा से बैगा बन गया। वास्तव में ये जाति औषधि उपचार और झाड़ा फूंक करने वाली एक कौम है, जो झाड़ा फूंक करती है और औषधि के द्वारा उपचार करती है। इस तरह की कृत्य करने वाले को बैगा कहा जाता था।

0: नर्मदा कहीं भी अकेली नहीं है। हिरन, बारना, कोलारमान, हथनी और सांग यदि उसके दाएं हैं, तो बर्नर, बंजर, दूधी, तवा, कंजाल और करजन जैसी 20 सहायक नदियां उसके बाएं हैं। भारत की अन्य नदियों की तरह ये पश्चिम से पूरब की ओर न बहकर पूरब से पश्चिम की ओर अरब सागर की दिशा में बहती है। 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करती हुई जब ये भड़ौच या भृगुकच्छ क्षेत्र से होकर खंबात की खाड़ी में मिलने लगती है, तब ऐसा जान पड़ता है कि यह अमरकंटक वाली शर्मिली नर्मदा नहीं है जो अपने उद्गम पर गुलबकावली के फूलों की सहज मुस्कुराहट बिखेरती है। यहां न तो नर्मदा का मेघ शेष बसता है, न उसका चिरपरिचित उद्वेलनकारी प्रवाह। निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राम नारायण उपाध्याय नर्मदा के नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं,
1: यह हमारा जो निमाड़ अंचल है, यह विंध्य और सतपुड़ा से रक्षित है और नर्मदा इसके बीच जीवन रेखा की तरह बहती है। गंगा जो है वो मैदानी इलाके से बही है, लेकिन वो ज्ञान की नदी मानी जाती है, लेकिन नर्मदा तपस्या की नदी है। इसके किनारे ऋषियों ने तप किया है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता जो है वो यह है कि इसने चट्टानों को चीर कर अपना रास्ता बनाया, मुसीबत में से आगे बढ़ी है, संघर्ष किया है, रव किया, इसलिए इसका एक नाम रेवा है। रव जो करेगा वो रेवा होगी और जो आनंद देगी वो आनंददायी नर्म यानी आनंद दाय यानी देने वाली। तो नर्मदा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह रेवा भी है और नर्मदा भी है।

0: जहां एक ओर नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर और महेश्वर जैसे तीर्थ नगर बसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जबलपुर और भड़ौच जैसे औद्योगिक तीर्थ भी। नर्मदा का अंचल उन्नत खेती, मछली उद्योग और स्वादिष्ट फलों के लिए भी जाना जाता है। हमने नर्मदा के किनारे खेती करने वाले कृषक, मछली पकड़ने वाले मछुआरे और फलदार वृक्षों की खेती करने वाले कृषकों से बातचीत की। कृषक श्री प्रेम शंकर चौधरी।
1: मैं तो ये कहूँगा कि होशंगाबाद और आजू बाजू के जितने भी नदी से जुड़े हुए गांव हैं, वो एक बहुत बलिदान साबित है और नर्मदा का कछार तो मशहूर है हमारे देश में। तो यहाँ गेहूँ चना की खेती शुरू से ही होती आई है और अच्छी होती है, और यहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फल भी बहुत अच्छे हुए हैं।
0: और ये है मछली पकड़ने वाले

0: डल्लो मंसूरिया।
1: अच्छा ये बताइए, आप जो काम करते हैं मछली निकालने का
2: जी,
1: तो इससे आपके परिवार की गुजर बसर हो जाती है?
2: जी हाँ हो जाती है।
1: अच्छा,
2: जब से हम ये यानी होश संभाला हमने, जब से हम धंधा करते चले आ रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं अच्छी अपनी हो जाती है बसर। घर में 10-12 है ना, तो हम आराम से दो आदमी हैं जो शिकार करते हैं मछली का धंधा, तो उनमें पूरे 10-12 आदमी को पूरा हो जाता।
1: नर्मदा नदी के कछार में जो मछलियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी?
2: नर्मदा जी के कछारों में मछली मिलती है, बारस मछली मिलती है, पाढ़न मिलती, रेहू मिलती है, और एक डीगर मछली मिलती है, और यानी बहुत सी मछली है नर्मदा जी की, जितनी मछली सब मिलती।

0: नदी का वर्णन हो और नाविक की बात ना हो तो ये कुछ अधूरा ही लगता है। लोगों को पार लगाने वाले नर्मदा के नाविक आज खुद मझधार में हैं।
1: आपका नाम बताइए।
2: खुशीलाल।
1: खुशीलाल जी, आप कितने सालों से नाव चला रहे हैं?
2: नाव का धंधा साहब मैंने 30 साल चलाओ और अब छोड़ दिया। अब पेट पालन नहीं हो, बड़े बड़े आदमी लेने लगे ठेका, हम लोगों की टांग नहीं पूरती।
1: हाँ, तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
2: बेगर रोजगारी बैठे बाड़ियों का धंधा करते हैं, तो खरबूज तरबूज की बाड़ियाँ बह जाती है हम लोगों की, पानी छोड़ देते बंदान वाले।
1: आपका नाम बताइए।
3: दयाचंद।
1: आप नाव का ही धंधा कर रहे हैं अभी?
3: और नाव का धंधा सब गया साहब, छोड़ा दिया। बड़े बड़े लंबे ठेकेदार लाखों से लेने लगे और हम छोटे परिवार के आदमी हम ठेका क्या ले सकते हैं? हमने जैसे तैसे लोगों से कर्ज लिया, तो वो कर्ज क्या लिया, तो अब वो कर्ज लिया तो लोग बाग बंधान छोड़ने लगे साहब। अब बंधान छोड़ने लगे तो उन्होंने हमें लालच दे दी सरकार ने कि हम आपको मुआवजा देंगे, तो हमने चलो आत्मा को शांति लगी। अब वो मुआवजा के विषय में कहने लगे, वो मुआवजा भी अपना कैंसिल कर दिया।
0: नर्मदा का कछार ही नहीं, यहाँ तक कि इसका पत्थर भी सैकड़ों लोगों के लिए जीवन यापन करने में सहायक है। नर्मदा का संगमरमर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट शिल्पकार संघ के अध्यक्ष के शब्दों में,
4: नर्मदा के प्रति भाव क्या सब जीवन अर्पण है और जीवन उसी से चल रहा है, क्योंकि नर्मदा ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ के सारे क्षेत्र को पाल रही है। क्योंकि जैसे खेती वालों को नहर पानी देती है, इस तरह शिल्पियों को नर्मदा शिल्पियों को पत्थर दे रही है।

0: मानव सभ्यता में नर्मदा की अपरिमित शक्ति के प्रति इतना विश्वास है कि वो इसकी सहायता से एक नए भारत का निर्माण करने का सपना देख रही है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बंधने वाले सैकड़ों छोटे मझोले और बड़े बांध पूरा हो जाने के बाद आसपास की बाढ़ और अकाल की चपेट में आने वाले अंचलों को खुशहाली और हरियाली से भर देंगे। किंतु नर्मदा पर बांधे जाने वाले इन भीमकाय विराट बांधों को लेकर लोगों के मन में आशंका, भय और उत्तेजना भी कुछ कम नहीं है। ये आशंका भारत के उन पर्यावरणवादियों और स्वयंसेवी संगठनों की है जिन्होंने बड़े बांधों के विरोध में जन आंदोलन छेड़ रखा है। इसी सिलसिले में हमने बाबा आमटे से बातचीत की।
1: दोस्त, हमारा आंदोलन नर्मदा के खिलाफ चल रहा है, वो खाली ये बड़े बांधों के खिलाफ का आंदोलन नहीं है, ये तो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं। हम कैसे बर्ताव करें, हम रहे कैसे, करप्शन कैसा हो रहा उसके खिलाफ है, वैसे इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो रिश्वत लाच ये जो कर उनके खिलाफ ही। स्ट्रगल अगेंस्ट नर्मदा बिग डैम्स हैज बिकम अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए यहाँ घाटी के लोग कहते हैं कि हम जल समाधि ले लेंगे, यहाँ ड्राउन एंड डाइ स्कोर्स खोलेंगे, लेकिन अपनी जमीन को छोड़ेंगे नहीं।
2: अब इन बातों के बारे में आपके दिमाग

0: में क्या विकल्प है?
1: छोटे छोटे बांध बनाते, उसकी व्याख्या बनती। मीडियम साइज बांध क्या होती, उसकी व्याख्या बनती। जहां नर्मदा के ऊपर बांध नहीं बांध सकते, वहां हमारे यहाँ कोयला जाता था, वहां थर्मल स्टेशन बनते। और सब जगह जैसे खरगोन जिले ने एक पैटर्न दिया है, लाखों पंप लगते हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स लगती, और अनाज कम नहीं पकता, बिजली भी महंगी नहीं होती।

0: एक ओर गुजरात की जनता का पीढ़ियों से चला आया बाढ़ और सूखा, दूसरी ओर बड़ी भारी आबादी का अपनी परंपरागत जमीन से विस्थापन और पर्यावरण विनाश आसन्न संकट। हमारी नर्मदा भी असमंजस में पड़ गई है, किंतु नर्मदा पुत्रों का हौसला फिर भी कम नहीं हुआ है। नए भविष्य की आशा में वे मध्य प्रदेश के अपने भावती गांव से बड़ौदा के निकट गुटाल गांव में आकर नए सिरे से बसने लगे हैं। शताब्दियों से मानव सभ्यता का ये क्रम यहाँ नए संकल्प के साथ अब भी जारी है।
1: मेरा नाम है बिहारी लाल, खरगोन जिला, तहसील बड़वानी, ग्राम भौती।
2: ग्राम भौती, तो यहाँ आकर कितने दिन हुए आपको?
1: यहाँ करीब हो गए हमको, मतलब 4 महीने।
2: वहाँ पर ग्राम भौती में आपके पास कितनी जमीन थी?
1: मेरे पास वहाँ पर कुछ जमीन नहीं थी।
2: अब आपके साथ यहाँ पर कौन कौन आया है परिवार में?
1: मेरे 2 लड़के और 1 मैं, 3 है मतलब।
2: आपके रहने की क्या व्यवस्था है
1: यहाँ पर? रहने के लिए मतलब अभी 3 सेट बना के दिए हैं, मतलब तो 3 सेट में रह रहे हैं अभी।
2: अच्छा, खेती के लिए जमीन वगैरह?
1: हाँ, खेती के लिए जमीन 5 एकड़ जमीन मतलब प्रति एक आदमी को दी गई है। मतलब तो मेरे घर में जैसे 3 सदस्य हैं, तो मेरे को 15 एकड़ जमीन, मेरे 2 बच्चों और 1 मैं, ऐसे मिला के 15 एकड़ जमीन मिली है। उसके अलावा और हमें मतलब 5,000 रुपये बैल जोड़ी के लिए अनुदान दिया है, और 375 रुपये अपने मतलब निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।
2: काका, आपका नाम बताइए।
3: मेरा नाम शुभ नाम केवल सिंह वास्कल है।
2: कितनी एकड़ जमीन आपके वहाँ पर थी?
3: 5 एकड़ 80 डिसमल।
2: अच्छा, तो वो जो खेती संभाल रहे हैं वो डूब में नहीं आ रही क्या?
3: डूब में तो आएगी, पर अभी नहीं आएगी।
2: अच्छा, कितने एकड़ यहाँ जमीन आपको मिली?
3: 15 एकड़।
4: मेरा नाम नादेशम सोलंकी, 5 भाई और 1 पिताजी, कुल मिला के 6 जने हैं।
2: वहाँ पर आपके पास कितनी जमीन थी?
4: सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी।
2: वो किसके नाम पर थी?
4: पिताजी के नाम पर।
2: अब यहाँ पर आपको कितनी जमीन मिली हुई है?
4: यहाँ पर 30।

0: गुजरात में बनाए जा रहे सरदार सरोवर ने जहां पर्यावरणवादियों और डूबने आने वाले लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गुजरात राज्य के लोगों को सरदार सरोवर में उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई देने लगी हैं। गुजरात राज्य के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सीसी पटेल,
1: गुजरात पिछले कई सालों से बाढ़ और अकाल से त्रस्त प्रदेश रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो आदमी और पशुओं के पीने के पानी की है। कहीं कहीं पानी का स्तर 30 मीटर नीचे चला गया तो कहीं कहीं 200-300 मीटर नीचे जा चुका है। सन 1985-86 में तो 16 लाख पशु चारा और पानी की तलाश में 400 किलोमीटर तक भटकते रहे। जहां ऐसी दशा हो वहां की जनता अगर नर्मदा के पानी को अमृत की तरह पाना चाहे तो क्या आश्चर्य है। सरदार सरोवर पूरे गुजरात के लिए नए जीवन और नए युग की शुरुआत है। जबकि बांध बनने से ज्यादा 1 लाख आबादी विस्थापित होगी, जिसे हम बेहतर और सुरक्षित स्थिति में योजनाबद्ध ढंग से बसा रहे हैं। इस बांध के बन जाने से

0: हम पांच एकड़ दे रहे हैं। अगर किसी संयुक्त परिवार में पांच वयस्क जवान बेटे हैं तो प्रत्येक को पांच एकड़ और खेती लायक जमीन देंगे।
1: ये बात सही है कि जब जब भी विकास की बात हुई कुछ विरोधाभास उभरे हैं, कहीं प्राकृतिक रूप में तो कहीं मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर। जहां एक ओर गुजरात पूरे संकल्प के साथ सरदार सरोवर बनाने में कृत संकल्प है, वहीं मध्य प्रदेश भी इंदिरा सागर बनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा किए हुए है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री शीतला सहाय।
2: मध्य प्रदेश जुलाई 1990 तक दो मत में था, बने या ना बने। यद्यपि ना बने ऐसी कोई गुंजाइश अब है नहीं, समूचा प्रकरण देखा, अध्ययन किया तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि नर्मदा सागर, जिसे इंदिरा सागर भी कहते हैं, बनाने की सिवाय और कोई हमारे पास चारा नहीं। इस बार बजट प्रोविजन भी हमने 180 करोड़ का किया है, 20 करोड़ और उसको मिल जाएंगे, इस तरह से 200 करोड़ के करीब खर्च होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 1000 करोड़ रुपए रखे हैं। कब तक लगभग ये पूरा हो जाएगा? अब नवी पंचवर्षीय योजना तक तो जाएगा।
3: नर्मदा सरोवर के बारे में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
2: जब जब भी विकास के काम हुए हैं उस समय कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विरोध आया है। भाखड़ा नांगल बना हो या इंदिरा नहर बनी हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध था। और इसलिए इन पर्यावरणवादियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने स्टैंड पर एक बार फिर से विचार करें।
1: पिछले 30-40 वर्षों से भारत की विकास नीति का ही एक हिस्सा है नर्मदा घाटी विकास, जिसके अनुसार पूरे अंचल में नहरों का जाल सा बिछ जाएगा, बिजली पानी की सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी, हमारे किसान ना तो बाढ़ की चपेट में आएंगे, ना सूखा और अकाल की मार खा खा कर आजीविका की तलाश में दर दर भटकेंगे। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां अपने छोटे बड़े बांधों के गहने पहनकर लहलहाते सीवानों में बदल जाएंगी और शत शत कंठों से फूट पड़ेगा

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

नाव मझधार में आने, आधी उठत प्रचंड, आधी उठता

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

0: श्रोताओं, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने कामदेव और संध्या के जन्म का विवरण सुना। कामदेव और रति का विवाह सृष्टि के सनातन कार्य का नियामक और भावी समाज के लिए विवाह प्रथा का द्योतक बन गया। सकाम भाव से पीड़ित हो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या ने देहाहुति दे दी, परंतु शिव वरदान से वे प्रातः संध्या और साय संध्या के रूप में अजर अमर हो गई। प्रभु आशीर्वाद से ही वो अपने अगले जन्म में महर्षि वशिष्ठ की विदुषी पत्नी अरुंधति बनी। अब प्रस्तुत है इसके आगे की शिवलीला। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: मुनि शौनक जी, इस प्रसंग के बाद प्रजापति दक्षराज ने अपने मानस से अनेक जीवों की रचना की।
2: महाभाग सूद जी, फिर तो समस्त सृष्टि इन जीवों तथा इनकी संतानों से व्याप्त हो गई होगी।
1: नहीं शौनक जी, जीव उत्पन्न तो हुए परंतु उनकी संख्या बड़ी नहीं। चिंतित दक्षराज परमपिता के पास उपाय

0: ये पूछने जा पहुंचे।
1: पुत्र दक्ष, तुम प्रजापति पंचजन की पुत्री आसिनकी अर्थात वीरणी से विवाह करो। तुम दोनों के दैहिक संबंध से सहस्रों जीव उत्पन्न होंगे।
2: परंतु पितामह, इससे प्रजा की अविरल उत्पत्ति कैसे संभव होगी?
1: ये सभी मानव दैहिक संबंध के माध्यम से ही भावी पीढ़ियों को जन्म देंगे। यही तुम्हारे तथा श्रीहरि के लिए प्रजा का विस्तार करेंगे।
2: जो आज्ञा परमपिता।
3: उत्तम, अति उत्तम सूत जी। तो इस प्रकार त्रिकालदर्शी ब्रह्मा ने मानव जीवन का सूत्रपात किया।
4: हाँ शौनक जी, दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी धर्मपरायण तथा आज्ञाकारी थे। पुत्रों के बड़े होने पर प्रजापति दक्ष ने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ सिंध नद तथा समुद्र के संगम पर स्थित नारायण सर तीर्थ पर तपस्या करो, प्रजा निर्माण का कार्य आरंभ करो।
3: फिर क्या हुआ ऋषिराज सूत जी? दक्ष पुत्रों की तपस्या ने ब्रह्म ऋषि नारद को सोच में डाल दिया।
5: नारायण नारायण नारायण। आइए महामुने नारद, विराजिए।
6: धन्यवाद श्री हरि।
5: कहिए, सब कुशल मंगल तो है?
6: नारायण नारायण। भगवान के होते हुए क्या अकुशल और अमंगल हो सकता है?
5: तो फिर आपके ललाट पर चिंता की ये रेखाएं क्यों?
6: चिंता नहीं महाप्रभु, जिज्ञासा, मात्र जिज्ञासा।
5: जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा मुने नारद?
6: महाप्रभु, क्या आपको ज्ञात है कि ब्रह्मांड में क्या घट रहा है?
5: ऋषिवर, आप तो दसों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं, फिर भला कौन सी घटना विशेष आपको हमारे पास खींच लाई है?
6: प्रभो, दक्ष पुत्र मानव सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं।
5: ये तो हर्ष का विषय है मुने नारद। हमारा तो जन्म ही सृष्टि संचालन के लिए हुआ है, अब उसमें मानवीय तत्व भी आ जुड़ेगा।
6: ये तो सत्य है श्री हरि, परंतु।
5: परंतु? परंतु क्या मुने नारद?
6: प्रभु, क्या संख्या के आधार पर मानव हम पर हावी नहीं हो जाएगा?
5: मुने नारद, हम 64 करोड़ हैं।
6: नारायण नारायण, क्षमा करें प्रभु, अकेली पृथ्वी ही इससे कहीं अधिक मानवों को आश्रय दे सकती है।
5: हाँ? तो फिर क्या किया जाए मुने नारद?
6: नारायण नारायण, महाप्रभु आपके समक्ष भला मैं तुच्छ क्या कहूं, मैं तो सेवक हूं, आप मुझे आदेश दें।
5: तो सुनो नारद,
4: महाज्ञानी शौनक जी, भगवान विष्णु के कहने पर नारद दक्ष के सहस्रों पुत्रों के पास गए तथा उन्हें बहला फुसला कर तपस्या से विरक्त कर दिया। दक्ष पुत्र पृथ्वी का अंत ढूंढने निकल पड़े। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसका कोई अंत ना था।
3: ऋषिवर सूत जी, दक्ष तो अत्यंत दुखी हुए होंगे।
4: हाँ शौनक जी, पुत्र वियोग से संतप्त दक्ष परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनकी व्यथा सुन ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी, धीरज रखते हुए प्रजा निर्माण का कार्य जारी रखने का आदेश दिया। दक्ष पत्नी ने पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद मुनि एक बार फिर दक्ष पुत्रों को अनजान तपस्या मार्ग पर भेजने को उद्यत हुए। नारद दक्ष पुत्रों को भ्रमित कर ही रहे थे कि दक्ष वहां

0: ठहरिए मुनि नारद, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पुत्र को भटका रहे हैं?
1: नारायण नारायण, दक्षराज, भटका नहीं रहा हूं मैं। मैं तो इन्हें पिता की आज्ञा पालन का सही मार्ग बता रहा हूं।
0: आपने पहले भी मेरे पुत्रों को ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना संन्यास का मार्ग दिखाया है। आप तो परम ज्ञानी हैं, क्या आप नहीं जानते कि इन ऋणों से मुक्त हुए बिना मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है?
1: प्रजापति दक्ष, मेरे बताए मार्ग पर चलकर तुम्हारे पुत्र सांसारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।
0: तूने मेरे पुत्रों को ज्ञान का मार्ग नहीं, फटकाव का मार्ग दिखाया है, इसलिए मैं दक्षराज तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी जीवन भर तीनों लोकों में भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। तेरा कहीं स्थाई वास नहीं।

0: क्या कर डाला? अपने मानस भ्राता को ये कैसा श्राप दे दिया? ऐसा क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र।
1: परमपिता, और जो इन्होंने किया वो शोभा देता है? अपनी अपनी कुटिल नीति।
0: कुटिल नीति नहीं दक्ष, कुटिल नीति नहीं, ये काल की नियति है, दैवी विधान है, और इसका निर्धारण स्वयं देवाधिदेव करते हैं। पुत्र, ये तो शिवलीला है।
1: शिवलीला? तो क्या सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है?
0: हाँ पुत्र, और जो वे करते हैं वो सदैव मंगलकारी ही होता है। पुत्र, वियोग का शोक मत करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रजा विस्तार का अपना कार्य जारी रखो।
1: जैसी आपकी आज्ञा विधात। जाओ पुत्रों, जाओ, जैसा मुनि नारद ने कहा है वैसा ही करो।
2: जैसी आज्ञा।
3: ब्राह्मण, फिर कालांतर में दक्ष के यहां 60 सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी होने पर दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को, 27 चंद्रमा को, 4 कन्याएं तार्क्ष्य तथा 2-2 कन्याएं भूत, अंगिरा और कृषश्व को ब्याह दी।
4: सूची, दक्ष की 61वीं पुत्री का क्या हुआ?
3: शिव महिमा का ये प्रसंग, अर्थात सती प्रसंग, अति महत्वपूर्ण, रोचक एवं विस्तृत है।
4: तो सुनाइए ना सती कथा।
3: अवश्य सुना जी। एक बार शिव माया के कारण परमपिता ब्रह्मा के मन में एक विचित्र विचार ने जन्म लिया। वे अपने को विष्णु तथा रुद्र से ऊंचा मानने लगे। इस पर भगवान शंकर ने उनका उपहास किया। उन्हें समझाने का प्रयास किया कि तीनों एक समान हैं, तीनों ही उनका अंश हैं।
4: और ये सत्य भी था सूत जी।
3: परंतु ब्रह्मा तो स्वयं शिवलीला से मोहित थे। वे बहुत क्षुब्ध हुए तथा रुद्रदेव से ईर्ष्या करने लगे। उनके हृदय में रुद्रदेव की तपस्या भंग करने की भावना घर कर गई।
4: रुद्र तपस्या भंग करने की भावना? फिर परमपिता ने क्या किया?
3: उन्होंने कामदेव और दक्ष को बुलाकर आदेश दिया कि वे किसी भी प्रकार रुद्र का मन मोहें, उनका ध्यान किसी कमनीय स्त्री के पाणि ग्रहण की ओर आकृष्ट करें।
4: तो क्या कामदेव को या दक्ष को इसमें सफलता मिली?
3: नहीं शौनक जी, अनेक प्रयासों के उपरांत भी महातपस्वी रुद्रदेव अपनी तपस्या पर अडिग रहे। ब्रह्मा दक्ष और कामदेव के साथ अगली नीति के विषय में सोच ही रहे थे कि नारद पृथ्वी का भ्रमण कर वहां आ पहुंचे।
5: नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता।
0: प्रणाम पुत्र नारद। विराजी।
6: प्रणाम मुनि श्रेष्ठ।
5: प्रणाम। ओहो, दक्षराज और कामदेव भी उपस्थित हैं। फिर तो अवश्य ही किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप हो रहा होगा।
0: हाँ पुत्र नारद, विषय तो गंभीर ही है। हम प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार रुद्रदेव अपनी तपस्या छोड़ वैवाहिक बंधन में बंध जाएं।
5: परमपिता, आप तो सदा ही रुद्र रूपी शिव का मंगल सोचते हैं। वैसे भी प्रभु, रुद्रदेव की इस घनघोर तपस्या से आपके और श्री हरि के वर्चस्व को हानि पहुंच रही है।
6: वो कैसे मुनि नारद?
5: दक्षराज, आप प्रजापति हैं, परंतु आपकी प्रजा आपके पिता की अपेक्षा भभूतधारी रुद्रदेव को अधिक पूजती है।
7: वो इसलिए नारद मुनि कि काम, क्रोध, लोभ और मोह से विलग रुद्रदेव सबके लिए आदर्श हैं।
5: नारायण नारायण।

0: क्या परमपिता और श्री हरि हमारे आपके सबके लिए आदर्श नहीं है?
1: अब
0: विशेषकर मानव जाति के लिए, जिसके यही कर्ता और भर्ता है।
2: पुत्र नारद, प्रश्न देवत्व के वर्चस्व का नहीं है, प्रश्न है हमारे द्वारा निर्मित जीवन के सुचारू संचालन का, उसमें रुद्रदेव के सक्रिय योगदान का। भविष्य को दृष्टि में रखते हुए रुद्रदेव का विवाह अति आवश्यक हो जाता है।
0: नारायण नारायण, तो फिर प्रभु विलंब कैसा? आप तो रचयिता हैं, रुद्रदेव के लिए किसी सुयोग्य नारी की रचना कर डालिए।
2: नहीं पुत्र नारद, उस नारी का मेरी मानस पुत्री नहीं, मानवी होना आवश्यक है। उसमें रुद्र बीज ग्रहण करने की क्षमता होना आवश्यक है।
3: कौन हो सकती है वो दिव्य मानवी?
2: हे श्रीहरि, आप ही कुछ उपाय करें।
4: प्रणाम भगवान विष्णुदेवा।
5: कहिए सृष्टिकर्ता, कैसे स्मरण किया?
2: आप तो अंतर्यामी हैं लक्ष्मीपति, आपसे हमारा कौन सा उद्देश्य छिपा है?
5: विधेय, क्या भूल गए हमें और आपको उत्पन्न करने के पश्चात देवाधिदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिव की तरह देवी शिवा के भी तीन रूप होंगे, लक्ष्मी, सरस्वती और सती। लक्ष्मी और देवी सरस्वती तो हमें प्राप्त हो गई हैं, अब रुद्रदेव को सती की प्राप्ति होना शेष है।
2: परंतु विष्णु हरि, निर्विकार योग परायण प्रभु किस स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार करेंगे, वो भी मानवी रूप में?
5: इसके लिए स्वयं देवी शिवा को मानवी रूप में अवतार लेना होगा। शिवा ही शिव की अर्धांगनी बन सकती हैं विधात। ब्रह्मपुत्र दक्ष,
3: आज्ञा श्री हरि।
5: पुत्र, तुम महादेवी शिवा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो, उनसे वरदान प्राप्त करो कि वे तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित हों। मात्र वे ही रुद्रदेव की पत्नी होने में सक्षम हैं।
3: जो आज्ञा महाप्रभु, जो आज्ञा।
6: प्रसीद भगवताद्य, प्रसीद शिव रूपिणी, प्रसीद भक्त वरदे, जगन्माये नमोस्तुते। प्रसीद भगवताद्य।

0: रूपिणी प्रसीद जगन्माए नमोस्तुते। प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद जगन्माए प्रसीद।
1: दक्ष, तुम्हारी इस 3 सहस्त्र वर्षों की तपस्या से मैं प्रसन्न हुई। इच्छित वर मांगो।
2: माते, परम आराध्य शिव ने तो रुद्र के रूप में जन्म ले लिया है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं है। ऐसे में रुद्र की अर्धांगिनी कौन होंगी?
1: हे ब्रह्मा पुत्र दक्ष, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
2: महादेवी, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें।
1: तथास्तु, मैं शीघ्र ही वीरणी के गर्भ से जन्म लूंगी।
2: मैं कृतार्थ हुआ माते।
3: हां शौनक जी, उधर देवी सती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। बाल अवस्था से ही उनका हृदय शिव भक्ति में लीन रहने लगा। युवावस्था आते आते उनकी शिव आराधना महादेव को पति के रूप में पाने की अभिलाषा में परिवर्तित हो गई। फिर एक दिन

0: परमपिता, विष्णु जी, समस्त देवगण एक साथ यहाँ आए हैं। मैं धन्य हुई।
1: पुत्री सती, तुम्हारी शिव निष्ठा से हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं।
2: परंतु पुत्री, रुद्र रूपी शिव को पाने के लिए तुम्हें और कठोर तपस्या करनी होगी।
0: आज्ञा करें प्रभु श्री हरि, मुझे किस वन, किस पर्वत पर जाना होगा?
2: नहीं सती, तुम घर पर ही रहकर 12 माह का कठोर नंदा व्रत करो। एकाग्र चित होकर रुद्र देव का ध्यान करो।
1: महादेव तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। जाओ पुत्री, आज आश्विन मास की पहली नंदा तिथि प्रतिपदा है। आज के इस शुभ दिन से ही अपना व्रत आरंभ करो।
0: जैसी आज्ञा ब्रह्मदेव।
3: श्री हरि, विधे, आप सब एक साथ कैलाश पर?
2: हे दुर्गा पते, हम भविष्य को दृष्टि में रखकर आपसे एक अनुरोध करने आए हैं।
3: निर्भय होकर अपने मन की बात कहिए हरे।
2: सृष्टि कर्ता के रूप में ब्रह्मा, संचालक के रूप में मैं तथा संहारक के रूप में आप रुद्रदेव एक दूसरे के पूरक हैं।
3: लक्ष्मीपते, आपका कथन सत्य है।
1: मैं और श्री विष्णु अपने निर्धारित धर्म को निभा रहे हैं, परंतु देव, संहारक के रूप में आपका कर्म अभी शेष है।
3: तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा ब्रह्मदेव?
1: देव, आपको अपनी तपस्या त्याग कर विवाह करना होगा।
3: विवाह? और हम? हे ब्राह्मण, मैं संसार से विरक्त योगी हूँ, भोगों से दूर रहता हूँ, विवाह को बंधन मानता हूँ। और फिर विधात, मेरे संघार कर्म और विवाह के बीच क्या संबंध है?
1: हे करुणा सागर, आने वाले समय में कुछ असुर मेरे हाथों मारे जाएंगे, कुछ विष्णु जी के और कुछ स्वयं आपके हाथों काल को प्राप्त होंगे। परंतु देवाधिदेव, कुछ असुरों के विनाश के लिए आपका विवाह करना तथा पुत्र उत्पन्न करना अति आवश्यक है।
3: आप त्रिकाल दृष्टा हैं, आप कोई अनुचित अनुरोध नहीं करेंगे। वैसे भी श्री हरि और ब्रह्मदेव, आप दोनों ही मुझे प्रिय हैं, हम अवश्य आपकी बात का मान रखेंगे। परंतु?
2: परंतु क्या रुद्रदेव?
3: ऐसी कौन सी नारी होगी जो मेरा तेज सह सके, मेरे कर्म के अनुकूल चले, जो योगिनी हो तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके, मेरे ध्यान और मेरी तपस्या में विघ्न न डाले, क्योंकि ऐसा करते ही उसका अंत हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, उस नारी का मुझ में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। अविश्वास करते ही मैं उसे त्याग दूंगा।
2: महेश्वर, देवी शिवा स्वयं दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। वे आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत कर रही हैं।
1: वे आपकी भार्या के रूप में सर्वथा उपयुक्त हैं। देवाधिदेव, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सती का पाणिग्रहण करें।
3: आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी।
0: देवाधिदेव, जगतपते, आप, मैं धन्य।

0: नहीं हुई प्रभु, मैं धन्य नहीं हुई।
1: दक्षिणंदिनी, तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हैं। कोई वर मांगो देवी, मांगो कोई वर मांगो। दक्षिणंदिनी मौन न रहो, हृदय की अभिलाषा व्यक्त करो। बोलो देवी।
0: कुछ कुछ मांगो तो आप दे पाएंगे?
1: हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मांग कर तो देखो।
0: आप हाँ। मेरे आप मुझे मुझे आप
1: मैं तुम्हें अपनी भार्या स्वीकार करता हूँ।
0: देव, मैं पूर्ण हुई। देव, मैं पूर्ण हुई।
2: आहा, कितना मंगल और मधुर वातावरण है।
3: नारायण नारायण, रुद्रदेव और देवी सती की जोड़ी कितनी दिव्य प्रतीत हो रही है।
2: स्वयं परम पिता ब्राह्मण बन विवाह संपन्न करवा रहे हैं।
3: इस अलौकिक रुद्र सती विवाह देखने को पूरा देव समुदाय उमड़ पड़ा है।
2: मंगल वाद्यों की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंज रही हैं।
3: अरे अरे सुनो तो, पितामह कुछ कह रहे हैं।
4: हे रुद्रदेव, हे देवी सती, विवाह संपन्न हुआ।
3: हम आपके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं।
1: हे ब्रह्मा जी, आपने ये विवाह संपन्न करवाया, इस कारण आप मेरे आचार्य हुए। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं?
4: देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने इसी रूप में इस वेदी पर विराजमान रहें। यहां आपके दर्शन प्राप्त कर मनुष्यों के समस्त पाप धुल जाएंगे, उन्हें विपुल पुण्य की प्राप्ति होगी, सभी रोगों का नाश होगा।
1: तथास्तु।
5: शौनक जी, आनंद में सहस्रों वर्ष बीत गए, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार ऐसी घटना घट गई कि रुद्र ने अपनी परम प्रिय पत्नी सती का त्याग कर दिया।
3: अपनी पत्नी का त्याग?
5: देवी सती रुद्रदेव के किसी कथन का अविश्वास कर बैठी। रुद्रदेव ने अपनी प्रतिज्ञावश तुरंत देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया।
3: ये तो बड़ी दुख भरी घटना घटी मुनिश्रेष्ठ। तो क्या इसके पश्चात दोनों अलग अलग रहने लगे?
5: नहीं सूची, यही तो शिवलीला की महत्ता है। रुद्र ने सती का केवल मानसिक त्याग किया था, पति पत्नी के रूप में दोनों साथ रहते थे, दोनों के बीच प्रेम और आदर भाव यथावत बना रहा। तभी तो रुद्र सती विवाह एक आदर्श माना जाता है। शौनक जी, रुद्र और सती तो सदैव साथ ही रहते हैं, उनमें वियोग असंभव है। उनकी अपनी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है।
6: श्रोताओं, आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 11वें अध्याय से 25वें अध्याय तक से लिया था। अगले अंक में दक्ष कथा को आगे बढ़ाते हुए दक्ष यज्ञ और सती दाह का प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोड़ राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि किस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान लंका के अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। आप लंका दहन का पूरा प्रसंग भी सुन चुके हैं। इस बीच राम और उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचती है और राक्षस राज रावण की असुर सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए मोर्चा संभालती है। अब सुनिए आगे। इस कड़ी के लेखक हैं डॉक्टर राम।

0: अंगद द्वारा रावण के सब समाचार पाकर श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलाया और लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और इसके लिए उपयुक्त सेनापति भी नियुक्त किए गए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। दूसरी ओर लंका में भी बड़ा कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने सारा समाचार सुनकर कहा,
1: इन बंदरों की ढिटाई तो देखो, मरने चले आए। राक्षसों की सेना को बुलाओ। ये बंदर काल से प्रेरित होकर ही यहां चले आए हैं। मेरे राक्षस वीर भी न जाने कब से भूखे हैं। लगता है गृह बैठे यहां अरविंद दीना। सुबह तो सकल चारों दिशा जाऊं, धर धर भालू की सब खाऊं।
2: श्री रामचंद्र महाराज की
3: जय।
2: श्री रामचंद्र महाराज की
3: जय।
2: राक्षस रावण की
3: जय।
2: राक्षस रावण की
3: जय।
2: राक्षस रावण की
3: जय।
0: भयानक संग्राम होने लगा। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डा रही, झपट ही चरण गहि पटकी मही, भजी चलत बहुरी पचा रही। वानरों के आतंक से राक्षसों के समूह उसी भांति भाग चले जैसे प्रबल वायु के चलने से बादलों के समूह बिखर जाते हैं। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते हुए सुना तो भागते हुए योद्धाओं को लौटाते हुए उसने क्रोध से कहा,
1: सुनो वीर, सुनो जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना, सर्व सुखाय भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा।
4: सचमुच हमें समर भूमि से नहीं भागना चाहिए, रण में लड़ने में ही वीर की शोभा है।
5: शत्रु को ललकारे और वानर भालू से भी
4: कहां है अंगद और हनुमान,
1: नल नील और दुर्विंद कहां है।
6: श्री रघुवीर की
4: जय। वो देखो हनुमान लंका के गढ़ पर कूद कर पहुंचे,
1: अरे
4: एक पर्वत लेकर मेघनाद पर दौड़े।
1: अरे भंजम रथ सारथी निपाता, ताही हृदय महु मानस लाता।
4: उधर देखो, उधर देखो, उधर गढ़ पर हनुमान को अकेले जानकर अंगद भी उतर कर गढ़ पर चढ़ गए।
7: दोनों ही हमारी सेना के विरुद्ध क्रोध से लड़ने लगे हैं।
8: हमारी वानर सेना कितनी विकट है। अंगद और हनुमान दोनों ही दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। दोनों लंका को ध्वंस करते हुए ऐसे शोभित हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मत रहे।
0: इस भयानक संग्राम की कोई तुलना नहीं थी। द्वौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मा नहीं हारी। राक्षसों के दो सेनापतियों अकंप और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित देखकर माया की। भयउ निमिख मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल धारा। घने अंधकार को देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। वे जहां तहां पुकारने लगे, हे राम बचाओ, हे रघुवीर रक्षा करो। तब कृपालु श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाकर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया। उससे तुरंत प्रकाश हो गया। प्रकाश होते ही भालू बलिमुख पाई प्रकाशा, धाये हरख विगत श्रमुत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भाजे, कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई, गरज ही भाली बलिमुख रिपु दल बल बिचलाई। इधर तो श्री राम जी की सेना राक्षसों का विनाश कर रही थी और वहां दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सी सुभट जे मारे।
1: मंत्रियों, बंदरों ने आधी सेना का संहार कर डाला। अब कहो क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत
9: जी,
1: आप वयोवृद्ध और हमारे श्रेष्ठ मंत्री हैं, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
3: सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाही बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख कहुन सुख पायो।
9: क्या कहा?
3: तुम नहीं जानते लंकेश, स्वयं कृपालु भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जो स्वयं काल रूप हैं, जो दुष्ट रूपी वनों को जलाने में अग्नि की भांति हैं, जो गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे कैसे विरोध किया जा सकता
9: है? मलिवन,
3: इसीलिए अपनी शत्रुता छोड़कर उन्हें जानकी जी सौंप दो और कृपा निधि परम स्नेही श्री राम का भजन करो।
9: अरे भागे, तू अपना मुख काला करके यहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं स्वयं तुझे मार डालता। जा, अब मेरी आंखों को अपना काला मुंह न दिखला।
3: लगता है तू श्री राम के हाथों अवश्य ही मरना चाहता है। चला जाता हूं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
10: पिताजी, प्रातःकाल मेरा चमत्कार देखिएगा, अधिक क्या कहूं, बहुत कुछ करूंगा।
9: तो ठीक कह रहा है मेघनाथ, मेरे मन में भरोसा है कि तू जो कह रहा है उसे करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
11: घोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, जो समस्त लोकों में धनुर्धर प्रसिद्ध हैं? नल, नील, दिवित, सुग्रीव और अत्यंत बली अंगद और हनुमान कहाँ है? अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं हट पूर्वक उसे और सबको मारूंगा।
0: मेघनाद ने बड़ा विकराल युद्ध किया। उसके द्वारा अपनी सेना को विकल देखकर पवनपुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़ता है। उन्होंने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया और मेघनाद पर डाल दिया, पर पहाड़ गिरते देखकर मेघनाद आकाश में चला गया। उसके रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना।

0: लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लक्ष्मण जी के प्रहारों से मेघनाथ प्राण मात्र शेष रह गया। प्राण संकट में देख उसने वीर घातिनी छांडे सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान उन्हें श्री राम के निकट ले आए। छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु राम बहुत दुखी हुए। जाम्बवान के परामर्श से हनुमान लंका गए और वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य ने श्री राम के चरणों में माथा नवाकर हनुमान को पर्वत से औषधि लाने के लिए भेजा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। मार्ग में रावण द्वारा प्रेरित काल नेम का वध करते हुए हनुमान पर्वत पर पहुंचे। वहां औषध को न पहचानने के कारण पर्वत को ही उखाड़कर आकाश मार्ग से चले। जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे तब देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी।
1: श्री राम, श्री राम,
2: जिस भाग्य ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया है उसी ने यह भयानक दुख दिया है। यदि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु राम के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो ये वानर पीड़ा से मुक्त हो जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए।
1: कुशलाधीश
2: हे तात, लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान राम का कुशल समाचार सुनाओ।
1: वनवास के प्रसंग में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के साथ पंचवटी में विश्राम कर रहे थे तो षड्यंत्र रचकर लंकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वानर आदि जातियों की सेना सजाकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उसी युद्ध में मेघनाथ की शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मैं उन्हीं के लिए हिमशिखर से औषधि लेने गया था। प्रातःकाल होने से पूर्व मेरा पहुंचना आवश्यक था।
2: हाँ दैव, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं प्रभु के एक काम भी नहीं आया। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी और प्रातः काल होते ही सारा कार्य बिगड़ जाएगा। मेरे बाण पर तुम पर्वत सहित चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा निधान राम के पास भेज दूंगा।
1: नहीं प्रभु, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही जाऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें।

तुम्हारा स्वभाव सदैव से ही कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में शीत ग्रीष्म और तीक्ष्ण वायु सहन की। हाँ, वैसा प्रेम अब कहाँ है? मेरे विकल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं उठते? जो जनते बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं हो। सुत भित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर कर ही ना। असम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जल देव जियावे मोही। हाय हाय, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा? मेरा कठोर हृदय तुम्हारे शोक को कैसे सहन कर पाएगा? नीच जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौ पेसी मोही तुम्हें ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु तेह जाई, उठ किन मोहे सिखावहु भाई। हाय।

0: कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तो नींद से जागो भाई, वहां अपनी सेना नष्ट हुई जा रही है और तुम्हें नींद क्या रही है। उठो कुंभकर्ण।
1: भाई मुझे कैसे जगाया, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं।
0: कुंभकर्ण, मारीच की सहायता से मैं अयोध्या के वनवासी राजकुमार राम की पत्नी सीता को हरलाया था। उसी ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की है। हे भाई, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवान तक, मनुष्यों को खाने वाली अतिकाय, अकंपन और महोदराज सभी वीर युद्ध में मारे गए हैं।
1: मूर्ख, जगत जननी का हरण कर तू अपना कल्याण चाहता है, राक्षस राज ये तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे किस लिए जगाया है। भाई अब भी तू अपना अभिमान छोड़ दे, श्री राम का भजन करे तो तेरा कल्याण होगा। श्री हनुमान जैसे वीर जिसके सेवक हैं, क्या वे श्री रघुनाथ सामान्य मनुष्य हैं?
0: कुंभकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो।
1: भाई बहुत बुरा काम किया तूने, पहले ही आकर अपनी बात मुझे क्यों ना सुनाई। तूने तो उस देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं। अच्छा तो अब तू अंतिम बार मुझसे भेंट कर ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं और तीनों तापों के दूर करने वाले श्याम शरीर और कमल नयन श्री राम के दर्शन करूं।
0: कुंभकर्ण, अब ये बेकार की बातें छोड़कर रक्षा का कोई उपाय करो।
1: अच्छा राक्षस राज, पहले मेरे लिए आहार लाओ। मदिरा के घट और भैंसों का समूह कहाँ है? आहार लेने के बाद मैं सेना लेकर राम से लड़ने जाऊंगा। ये सामने से कौन चला रहा है?
2: मैं आपका छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता
1: हूँ। प्रसन्न रहो, कहो कैसे हो।
2: तात, लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तहीं गलानी रघुपति पहीं आये हूँ, देख दीन प्रभु के मन भाये हूँ।
1: सुन सुत, भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। तू मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का भजन कर, रावण की बात पर मैं भी काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। अच्छा अब तू जा और मैं भी चला। खाऊंगा सबको, खा जाऊं।
3: अरे दुष्ट कुंभकर्ण, ठहर, मैं इस वार से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ।
0: अरे ये क्या, ये तो भाई कुंभकर्ण का सिर जान पड़ता है। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम भी रणक्षेत्र में मरण को प्राप्त हुए।
4: हे पिता, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी अपनी प्रशंसा क्या करूं। मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति और रथ प्राप्त किया है वो अब तक मैंने आपको नहीं दिखलाया, कल देखिएगा।
5: प्रभात होते ही मेघनाद युद्ध भूमि में जा डटा। उसने विविध विध भयानक युद्ध किया। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से छा दिया। श्री राम की सेना के सभी वीर व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि की देह को बाणों से छलनी बनाकर मेघनाद ने श्री राम जी पर आक्रमण किया। उसने बाणों के नागपाश में श्री राम जी को जकड़ लिया। श्री राम भी नट की भांति अनेक प्रकार से कौतुक करने लगे। जब जांबवान ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद ने एक पैना त्रिशूल चलाया। जांबवान ने उसे बीच में ही पकड़कर मेघनाद की छाती में मारा। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। उसने श्री राम के शरीर में लिपटे हुए सभी माया सर्पों को खा लिया। वानर के समूह भी माया से मुक्त होकर हर्षित हो गए। जब मेघनाद मूर्छा से जागा तो पिता को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। वो विजय यज्ञ करने की इच्छा से एक पहाड़ की कंदरा में चला गया। तभी विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से आकर कहा,
6: हे अतुल बल वाले प्रभु, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसे प्रभु शीघ्र ही जीता नहीं जा सकेगा।
3: अंगद, सुग्रीव आदि बंधु, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और उसका ये यज्ञ विध्वंस करो। और लक्ष्मण, तुम्हें उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भय से संतुष्ट देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। अपने बल और बुद्धि से इस भांति उस निशाचर को मारना जिससे वह क्षीण होकर मर जाए। हे जांबवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लक्ष्मण के समीप सेना सहित रहना।
7: मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जोते ही आज बधे बिनु आवो तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत्संकर कर ही सहाई तदपि हतो रघुबीर दुहाई।

0: इस पापी को मैंने बहुत खेल खिलाया, अब इसे मारूंगा। जय श्री राम।
1: लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कहाँ है?
2: तेरी माता धन्य है मेघनाथ, धन्य है। तेरी मुख से मरते समय राम का नाम तो निकला।
3: जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ का वध सुना तो वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे और सभी रावण को अपशब्द कहने लगे। रावण ने सब स्त्रियों को समझाया कि समस्त संसार नाशवान है, किंतु स्वयं रावण पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहीं ते नर न घनेरे। रात बीतने पर सवेरा

0: नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जीता वीर भलवाना।
1: सखा सुनो, जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज चोरे। सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न कह न कतों रिपुताके। मित्र जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्गम शत्रु को भी जीत सकता है।
0: हे कृपाल, हे सुख निधान, इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया। प्रभु मैं धन्य हुआ। प्रभु

0: दशकंदर संभल, अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है।
1: जीते हु जे भट संजुग माही, सुनता पस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत ज सजाना, लोक बजा के बंदी खाना। खरदूषण विराद तुम हमारा, बदिर व्याद बाल बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हु, कुंभकर्ण घन नाद है मारे हु। आज बैर सब ले निबाही।
2: चूरण भूप भाजी नहीं जाही, आज करह खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले।

0: छा गई। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में उठाकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर तो ये सब हो रहा था, उधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें ये सब कथा सुनाई।
1: हो ये कहा कहा से किन माता के बिच मरे ही पे सुदुख दाता, कैसे आश्चर्य की बात है कि रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई, पिथ विपरीत चरित सब करही, मोर अभाग्य जियावत ओही, चेहि हूँ हरिपद कमल बिछोही।
2: धीरज रखो राजकुमारी, मुझे पूरा भरोसा है कि हृदय में वाण लगते ही देवताओं का शत्रु मारा जाएगा। देखिए प्रभु ताते उर हतई न तेही, एही के हृदय बसती बाय देही। सुंदरी संदेह मत करो, सुनो शत्रु इस प्रकार मरेगा, काटत सिर हो ही विकल, छुटी जा यही तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मरे ही राम सुजान। चिंता मत करो, सब प्रकार तुम्हारा कल्याण ही होगा। अच्छा देर हो रही है, मैं चलूं।
1: अरे तुष्ट चंद्रमा, तुझे शीतल कौन कहता है, तू तो बहुत ही दुखदाई है, और ये रात भी तो नहीं बीत जाती। हाय शुग संभई सिरातिन राती। अरे इस समय ये मेरा बायां नेत्र और बाहु कैसे फड़क उठे, क्या क्या ये शुभ शकुन इस बात की सूचना है कि कृपालु श्रीराम जी से शीघ्र ही भेंट होगी। प्राणनाथ स्वामी।
0: आधी रात को रावण मूर्छा से जागा, उसने सारथी को धिक्कारा। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। फिर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। श्री राम जी के बाणों से रावण के शरीर से रुधिर की धारा बह चली। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना, 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत सीस मही पारे, काटते ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने, प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत झटत पुनि नूतन भये, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा, काटे सिर भुज बार बहु, मरतन भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कले।
3: शत्रु को जीवित देख देवता से धौर मुनि व्याकुल हो रहे हैं प्रभु।
4: क्या तुम भी भयभीत हो विभीषण?
3: हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है प्रभु, रावण उसी के बल पर जीवित है।
5: कहाँ राम, कहाँ राम रणहतों पुचारी।
6: श्री रामचंद्र महाराज की
7: जय।
0: श्री राम जी के बाणों ने रावण की भुजाएं और सिर मंदोदरी के सामने लाकर गिरा दिए। पति का शीश देखते ही मंदोदरी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां रोती हुई दौड़ी, वे मंदोदरी को उठाकर रावण के शव के पास ले गईं।
1: तत्कलनाथ कौन नित धरणी, तेजहीन पावक सुनि तरणी, शेष कमठ सही सकही न भारा, सो तनु भूमि परे परिचारा। ए स्वामी, विदाता की समस्त सृष्टि तुम्हारे वश में थी।

बड़ा विकराल युद्ध हुआ। श्री राम जी ने बार बार रावण के सिर और भुजाओं को काटा और वे बार बार उगाए। आकाश में सिर और बाहु जैसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हूं। हनुमान, विभीषण आदि सभी के साथ युद्ध करते हुए रावण ने अपार शक्ति और माया का प्रदर्शन किया। वानर सेना का विध्वंस देखकर जांबवान ने रावण की छाती में लात मारी। इससे रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। उसे

0: के स्वामी सदैव डरते हुए तुम्हें मस्तक नवाते थे। अब तुम्हारे सिर और भुजदंड गीदड़ों का भोजन बनेंगे। तुम श्री राम से विमुख रहे। ये तो होना ही था, काल के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरा भी कहना नहीं माना और चराचर के स्वामी श्री राम को तुमने सामान्य मनुष्य समझा। हे स्वामी, तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने पर तत्पर रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ।
1: घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर अत्यंत दुख से विभीषण उनके पास गए। भाई रावण की दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। प्रभु राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण को धैर्य दिया। प्रभु राम की आज्ञा मानकर देश काल के अनुसार विभीषण ने रावण की सब क्रियाएं की और मंदोदरी आदि स्त्रियों ने रावण को तिलांजलि दी। वे सब मन ही मन प्रभु राम के गुणों का वर्णन करते हुए महलों में चली गईं। तदनंतर श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी, वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान और हनुमान ने नगर में जाकर विभीषण को सादर सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया और रीत के अनुसार उनकी स्तुति की। विभीषण का राज तिलक होने के उपरांत सभी वानर विभीषण सहित प्रभु राम के पास आए और श्री राम ने प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।